वक्त दो हाथों पर चलता रहता है, एक सा रहकर बदलता रहता है। हर कोई उसका हमराह है, पर सुना है उसका रास्ता। हर किसी से है रिश्ता, पर किसी से नहीं वास्ता। वक्त रक्त की तरह बहता हुआ, तोड़ा है मैं चक्रव्यूह के सेकंड मिनट दिन वर्ष। शिकस्त की दूर में दब चुके हैं आंसू खुशी का हर्ष। हाँ, बह चुका है मेरी नसों में

0: फिर क्या हुआ? पुलिस तो हमारी मुट्ठी में है।
1: यू डोंट टॉक नॉनसेंस।
2: पिंटो, यस बॉस। माल अंडर वाटर टनल से क्लियर होना चाहिए।
3: अंडर वाटर टनल इज रेडी।
2: गो अहेड।
4: होल्ड अप, हैंड्स अप।